0: appalling given the fact that they're saying that these incidents can happen, these are sporadic, and that they're kind of normalizing as far as, you know, keeping that tagline of, you know, Bihar not really being a very safe state, particularly when it comes to women, saying that, you know, they used to not go out at night earlier, so which is why these incidents didn't really happen. Now that they go out, such incidents can happen, is the way the political parties are reacting.
1: Yeah, this is very weird, especially when it comes from a person like Umesh Kushwaha, who happens to be the national president of JDU. Remember, JDU happens to be the coalition partner out here in Bihar, and the statement he made was really, really appalling. He said that it's a choti moti ghatna, chutput ghatna is what he actually used the term, chutput ghatna hoti rehti hai. And because of his statement, the government has come into the firing line. We are seeing the opposition actually taking up this issue, not only Tejasvi Yadav making out a statement, but also today at around 4 p.m., the Congress has organized a protest march here in Patna. So it's taking a political overturn as far as this Jammu incident is concerned, but the government is certainly on defensive. We saw the police headquarters here in Bihar making out a statement, the senior leaders, the ministers, they're all out there, and they're trying to do damage control over this entire episode which has happened out here. But the opposition has lapped up this issue, and they are certainly trying to corner the government over this.
0: A sporadic and isolated incident is how the government of Bihar is reacting. Thank you so much for joining us, Prabhakar, with the very latest. Let's just switch tracks and get you more details, and let's talk about, in fact, an exclusive conversation. This is with NDTV's, had with the Union Minister. We're talking about Hardeep Singh Puri, who has, in fact, talked about India's energy security, particularly LPG supply. The minister dismissed any rumours about shortages and directly addressed concerns over black marketing, hoarding and opposition criticism. Let's listen in to what the Petroleum Minister had to say.
2: देखिए असलियत क्या है, दुनिया भर में सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हुई. गैस सिलेंडर जो है, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ए रिफाइनरी. आप कच्चे तेल को रिफाइनरी में डालते हैं, उससे एलपीजी बनती है. थ्रू शेयर कोइंसिडेंस हमारे जो बाहर के एलपीजी सप्लायर्स थे वो सारे हॉर्मूज के पेरिफेरी में थे, इमरातीज, यूएई, सऊदीज, कतारीज. जब हॉर्मूज बंद हुआ तो असर तो पड़ना था. बट द टेस्ट इज, दिस इज माई कहता हूँ, व्हेन गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग. पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या निर्णय लिए, हमने डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा दी. हाँ, पहले 34,000 मेट्रिक टन पर डे थी, उसको उठा के हम 55,000-56,000 मेट्रिक टन. कहीं भी एलपीजी के शॉर्टेज नहीं हुई. अखिलेश जी, हमारे देश में 1,07,000 रिटेल पॉइंट्स हैं पेट्रोल पंप, कहीं भी ड्राई आउट नहीं हुआ.
3: कुछ बीच में जरूर अफवाहें उड़ाई गई थी.
2: अफवाहें तो मैं अफवाहें पे आ रहा हूँ, अफवाहें पे. ओ जी, इतनी लंबी लाइन लग गई है गैस स्टेशन के बाहर. मैंने कहा, मेरे भाई, गैस सिलेंडर तो पर्सनली जाना नहीं पड़ता, आप अपना फोन उठाइए, उसमें ऐप में करिए, आपके घर में 24 घंटे में पहुंच जाता है. तो देखिए, गलत अफवाह फैलाने वाले में कोई कमी नहीं है.
3: पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें लगाने पड़े थे एलपीजी को लेकर.
2: मैं बताता हूँ, रिस्ट्रिक्शन ये लगाने पड़े थे कि कहीं जगह, जैसे रूरल एरियाज में हमने जो सिलेंडर की रिप्लेसमेंट है, पहले मैं बता रहा हूँ, रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाने पड़े क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई थी. आपको अगर क्लासिक केस ब्लैक मार्केटिंग का बताऊं तो ऐसा होता है, आप पहले हवा फैलाइए कि शॉर्टेज होने वाली है, फिर शॉर्टेज होने वाली है, फिर आप
3: होल्डिंग कीजिए.
2: नहीं, होल्डिंग नहीं, अच्छे लोग समझदार. हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, वो गुरुग्राम में रहती हैं, मल्टी स्टोरीड में. तो एक दिन उनका फोन आया कि पंजाबी में कह रही थी कि माता जी ने भी सिलेंडर 3-4 मंगवा लिया. तो मैंने कहा, मैडम आपके यहाँ तो पाइप्ड गैस है. फिर वो पंजाबी में कहते हैं, फिर भी मतलब अगर आपने सुना कि किसी चीज़ की शॉर्टेज होने वाली है तो माला होल्डिंग करनी शुरू कर. तो कुछ लोगों ने उस पर वो ट्रेडिंग शुरू करी. तो हम ये चाहते थे, देखिए, एक सिलेंडर उज्ज्वला योजना में हमने देखा 10 करोड़, उसके 10 करोड़ 50 लाख लाभार्थी है. एक सिलेंडर, एक अगर 4 लोग हों एक परिवार में तो कितनी देर चलेगा, 3 महीने चलेगा. किसी परिवार में 4 सिलेंडर से ज्यादा नहीं है. अगर किसी की इंडेंट रिक्वायरमेंट 4 सिलेंडर हो, वो 4 के 16 सिलेंडर खरीदने

0: शुरू करते हैं तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, दिस विल एवरेज पर डे इंडेंट एलपीजी सिलेंडर की हमारी 52 लाख थी, 52 लाख। जब यह अफवाहें फैलाए एक दिन में 90 लाख चली गई,
1: डबल, ऑलमोस्ट डबल,
0: डबल हो गया। तब हमने कहा कि भैया गलती कर रहे हो, जिस लोगों ने खुद उन्होंने सिलेंडर लेके, क्योंकि अगर आपको चार चाहिए पर आपको से उज्ज्वला में 9 अलाउड है या जितने अलाउड है, आपने जितने 9 चाहिए थे वो भी ले लिए। फिर हमने उसको कर दिया और हमने सारी बुकिंग ऑलमोस्ट 98% ऑनलाइन हो गई है उसकी, तो मतलब स्कोप है ही नहीं।
2: Well, that was the petroleum minister, and with that, we're slipping into a short break. But on the other side, we're going to get you national awards coming up today. I'm not in Delhi for the very first time. They're going to be held in the state of Gujarat. We're going to get you details first. Let's slip into a short break.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the

0: recently in the month of Sawan, you went all the way to Haridwar with that Kavad. Kya ye cultural nationalism hai, tech pe dhyan de? क्या है क्या आपकी मैसेजिंग, कावड़ या कंप्यूटर?
1: क्या टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन साथ में नहीं जा सकते क्या? डज बीइंग प्रोग्रेसिव और बीइंग टेक सेवी, डज इट मीन वी अपरूट आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर कल्चर?
0: सो सोमनाथ एंड स्टार्टअप्स कैन बोथ कोएग्जिस्ट,
1: दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया सो स्पेशल. इफ वी होल्ड ऑन टू वन एंड लीव द अदर, देन पद्मजा, इंडिया विल स्टॉप टू बी भारत.

0: I've come in support of Professor Dula. Meanwhile, Sahil Wakore's aunt has alleged that he faced caste-based discrimination and said the family wants the complete truth to emerge. She has demanded for all the CCTV footage, arguing that the case should not be limited to one professor and alleging that several people may have been involved. But you must note that the IIT Bombay row has split the campus response, with students questioning the administrative account, the administration's account, and demanding an independent probe and stronger welfare reforms, while the faculty forum has defended the professor, as we mentioned, saying he followed the Senate-approved procedures, has a strong service record, and was targeted by false media reports. Remember, Professor Dula was the invigilator in the hall where students, including Sahil Wakore, were taking a test, where the professor allegedly caught Sahil with a mobile phone and using ChatGPT inside the hall. Here are the reactions you need to listen to at the moment.
1: शाम को हमें सिर्फ कॉल आया प्रोफेसर का
2: जी,
1: अचानक से कॉल आया सर, रात 8 बजे की साहिल ने सुसाइड किया है ऐसा करके कॉल आया। इतने दिन होने के बाद उस प्रोफेसर ने माफी मांगी और प्रोफेसर बता रहे कि साहिल ने कुछ गलती नहीं की, फिर भी साहिल के साथ ऐसा क्यों हो गया? सर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे साहिल को न्याय मिलना चाहिए। अगर उसकी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? आज तक की ये पहली घटना नहीं है सर, और जो भी घटनाएं हुई है इस घटना के बारे में आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी गई, कुछ ही हुआ नहीं। लेकिन हमने जब ये बोला तो हम पर भी वो प्रेशर डाल रहे है।
3: साहिल ने माँ बाप को बोला था कि मम्मी यहाँ पे थोड़ा बच्चों पर अन्याय करते हैं, जातिवाद करते हैं। आज वो कॉलेज में अगर साहिल के आज भी फेवर में न्याय नहीं मिल रहा होगा तो आज भी साहिल पर अन्याय ही हो रहा। हमारा पूरा भरोसा है कि ये चौकसी सीबीआई करे।
4: के विंगमेट थे आप लोग, दूसरे को जानते थे, एग्जाम में कॉपी किया गया, इसको लेकर आपको उसने क्या बताया?
5: उसने किसी से भी कुछ बात नहीं की, यही बात है, सब स्पेक्युलेशन है। कॉपी करने के बाद जब उसको बाहर लेके गए उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की, तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। आई डोंट थिंक, जितना मैंने फर्स्ट ईयर में उसे देखा, कि हमने से किसी में या उसके दोस्तों में से किसी ने उसके कास्ट पर कभी भी रिमार्क किया हो। IIT बॉम्बे में ऐसा कल्चर है ही नहीं कि कोई किसी के कास्ट पर रिमार्क करता है, क्योंकि हम सारे JEE स्टूडेंट, हमें आइडिया है कि ये सब नहीं करना होता है, हम इतने एजुकेटेड हैं। एंड मुझे नहीं पता ये एंगल कहाँ से आया। डी ने कि ये सस्पेंशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट, उसका भी रेजिग्नेशन नहीं था, क्योंकि जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हम उनका रेजिग्नेशन नहीं मांगते।
0: Alright, let's turn our attention to breaking news we're tracking currently on the breakfast show. 3 separate cases of alleged sexual violence involving minors have brought renewed attention to women's and children's safety in the national capital over the past week. These cases are being investigated in different parts of the city, involving different circumstances and accused persons. The one in Sadar Bazaar, police say a minor was allegedly lured into a tailor's shop and sexually assaulted. The accused has now been identified and was arrested and sent to judicial custody, the police has confirmed. In the Deshbandhu Gupta Road area, meanwhile, a 6-year-old girl was allegedly sexually assaulted by a 34-year-old man known to local residents. Police have now taken the accused into custody and sent the child for medical examination, and also began registering a case under the POXO Act and relevant provisions of the BNS. And near Kalkaji Temple, a 17-year-old survivor has alleged that 3 men approached her and her friend, claimed to be police personnel, threatened them and sexually assaulted her. Delhi police have now apprehended one accused following a brief encounter and are attempting to trace the others. These are absolutely shocking details coming in. We've got a crucial reaction lined up for you. Listen in before we get in the further account from Anushka Garg. All right, Anushka will just be joining us in a few moments from now. 3 separate cases of alleged sexual violence involving minors have renewed attention to women's and children's safety in Delhi over the past week. Anushka now joins us with further clarity. अनुष्का, वी गिवन टू

0: This action comes after the FIR was registered under sections of the BNS and the POXO Act as well. The police officials have also launched a digital crackdown on social media accounts which circulated this video, with a takedown action being initiated against 32 such accounts so far. Shocking details coming in from Bihar's Jamui.
1: Jamui police ke dwara teen nabalig bachchon ko nirudh ki gayi hain aur isme do aur ki involvement bhi pata chala aur do aur ho sakta hai. To हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था जमुई थाना कांड संख्या 428 भी सेक्शन 74, 75 बीएनएसएस और 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई है. साथ ही साथ जितना वीडियो वायरल हुआ है हम लोग टेकडाउन नोटिसेस जारी किया, जिसमें 13 फेसबुक और 12 इंस्टाग्राम का अकाउंट्स और 7 ट्विटर के अकाउंट्स हम लोग के द्वारा टेक डाउन कर लिए और जारी है क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ.
0: Meanwhile, this molestation horror from Bihar's Jamui has triggered a political storm, with the opposition questioning the government over women's safety and police. But the response from the Bihar government has added fuel to this political battle. JDU State Chief Umesh Kushwaha called such incidents sporadic, while Bihar Minister Shravan Kumar said isolated crimes cannot be completely eradicated. The opposition has hit back hard, with Tejaswi Yadav accusing the Bihar government of Gunda Raj and saying women are not safe in the state of Bihar. Congress's Rahul Gandhi, meanwhile, has hit out at the state government, criticizing what he describes as the normalization of mob vigilantism and harassment. The BJP and the JDU, meanwhile, they are defending the administration, pointing to arrests and action against those involved. This as four are yet to be nabbed.
2: घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था. कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था ना. आज तो लोग कम से कम, ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है. प्रशासन जल्द से जल्द जो घटना का जो अंजाम दिया है, चाहे 12 से 12 कोई कितना बड़ा कोई अपराधी क्यों नहीं हो, वो जल्द ही पुलिस के कब्जे में आएंगे.
3: बहुत ही दुखद घटना है, हम लोग बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रही है. आप देखिएगा, यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो है अब घूम रही है फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी. ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी के बयान पर एक संदेह पैदा करने वाला घटना है.
4: इस घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं सरकार की ओर से, और निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन के पदाधिकारी इसमें एक उचित और कठोर कदम उठाएंगे. मैं इस जैसे आपसे मीटिंग खत्म हो जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ के मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात करूँगा जम्मू के, और सुनिश्चित उन्हें कहेंगे कि सुनिश्चित करें कि कोई भी इसके लिए जिम्मेवार हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसको चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें.
5: मैम, आप जमुई की खुद भी विधायक हैं और आपने भी पूरे घटना को देखा होगा, कैसे देखती हैं इस घटना को?
6: देखिए, निश्चित रूप से हम सब लोग इसके लिए बहुत दुखी हैं, परेशान हैं. इस तरह की घटनाएं समाज को शर्मसार कर देती हैं, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो क्रिमिनल माइंडसेट के हैं, और आज भी इन मोरल पुलिसिंग के नाम से इस तरह के घटनाक्रम को वो लोग धरातल पर उतारते हैं. मुझे जहाँ तक जानकारी है कि परिवारजनों के द्वारा प्राथमिकी नहीं दर्ज कराने के वजह से थोड़े सा विलंब इस कार्रवाई में हुई. लेकिन जमुई के जो प्रशासन है, एसपी साहब है, डीएसपी, क्योंकि स्वयं एक महिला है, उन्होंने इस घटनाक्रम को देखा, समझा सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसके बाद तुरंत कार्रवाई करके आज दोपहर तक 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है.
7: देर संध्या में वो सब ने सोशल मीडिया पर देखा है, जैसे ही पता चला तुरंत गिरफ्तारियां हुई है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है होगी.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: Rahul Gandhi is also hitting out at Bihar's governance and in fact criticizing what he describes as normalization of mob vigilantism and also harassment. The BJP and the JDU have also defended the administration, pointing to arrests and action against those who are involved.
1: ऐसे ही लोग को इनकाउंटर होना चाहिए जो समाज को तोड़ना चाहता है, समाज के बेटी बहुओं की इज्जत लूटना चाहता है, वैसे ही लोग को इनकाउंटर होना चाहिए। तो ये तो जब कानून का डर खत्म हो जाएगा तो लोग ऐसे ही करेगा। इसलिए कानून का राज खत्म हो गया है और ऐसे लोग का राज चल रहा है जो भ्रष्ट लोग हैं, जो अपराधी हैं। अपराधी पर जब तक लगाम नहीं लगेगा और ऐसे लोग को इनकाउंटर नहीं किया जाएगा तो ऐसे ही होता रहेगा।
2: घटना का मामला पुलिस के संज्ञान में आया, तुरंत पुलिस ने ही FIR दर्ज किया। तुरंत 3 गिरफ्तारियां भी हुई। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। SIT का गठन किया गया है। लेकिन सभी समाज में ऐसी घटनाएं किसी हालत में भी स्वीकारता नहीं है और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए इसके जितने भी निंदा की जाए कम है, लेकिन प्रशासन तुरंत, जैसे ही पता चला, पुलिस तुरंत सक्रिय हुई पता चलते ही, और 3 व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया। 3 अभियुक्तों को, जो मुख्य अभियुक्त है, वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएंगे।
3: अच्छा, एक बात बताइए, वो लोग कौन है और लोगों के भीतर कानून का, संविधान का, सरकार का, सिस्टम का डर क्यों नहीं है? समाज का डर क्यों नहीं है? ये डर खत्म कैसे हुआ? तुम होते कौन हो पूछने वाले कि तुम्हारे माँ बाप को खबर है कि नहीं? और उसके बाद तुम 25 मिनट तक उस बच्ची के साथ, बच्चों के साथ बदतमीजी किए हो, तुम बच्चों को मारपीट किए हो, और एक लोग नहीं, कई लोग, समाज का कितना नैतिक पतन हो गया है। तो गाली सिर्फ सरकार को देने से क्या फायदा? सरकार तो है ही नहीं। डबल इंजन की सरकार और बीजेपी की सरकार,
4: बार में डांस करने वाली, फिर आप कहोगे कि किसी दूसरे प्रकार की बात, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस प्रकार की बात आप करोगे तो नीचे तक संदेश क्या जाएगा? ये मानसिकता से जो लोग ग्रसित हो रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात तो अपने जगह की हुई, वो कानून व्यवस्था के टूटने की स्थिति क्यों बन रही है? कि जो हमारे टॉप लीडर्स माने जाते हैं देश के, जिनको दिशा हमको दिखानी चाहिए, उनकी सोच तो ये है महिलाओं के प्रति, ऐसे दिखेगा ना? आप किसी महिला के लिए अगर सार्वजनिक मंच से इस प्रकार की बातें करोगे तो उसका संदेश क्या जाएगा? अरे ठीक है, चलता है ये, क्या महिला, महिला को आपने आदर उनका एकदम से गिरा दिया। तो ऐसी घटनाएं घटित हो जाएंगी फिर।
0: Let's get you more political reactions coming about, and we have the LJP MP Shambhavi Chaudhary speaking to NDTV's Shivarur about the incident. Where was the police? Can law enforcement wait for public outrage basically to react? And what does this case say about the safety and freedom of young women in the state of Bihar? Listen in.
5: Shambhavi, I know you've seen this story, and this is a truly terrifying video that has gone viral. A class 10 girl and her friend being assaulted in full public view as a woman, as a young MP. This happened in your state. Your government is in power. What should the young people of Bihar think, according to you, Shambhavi?
6: First of all, I think this incident is disgusting. And as a woman, when I saw the videos, I was ashamed, I was terrified, and at the same time I felt responsible for whatever was happening to the girl. I don't think there is any justification for this incident, but the government is with the girl and the girl's family, and we are trying our level best to bring justice to her. There are three you can say that there are three people who were involved have already been arrested, and there is a special task force has been a special task force has been brought into

0: action. They are going to investigate this properly, independently, and nobody will be spared of their actions.
1: But Shambhavi, you know, where was the police? People are wondering. Some people are, trying to pass this off as moral policing. But this is child sexual abuse. You've seen how this girl was practically, she was groped. She possibly could have been raped as well. Somebody was even filming it. This was plain criminality. People are trying to pass it off as moral policing.
0: No, definitely. I think there is no fear, and it looks like, they had already planned to do all of this because their face were covered, and it's not like they didn't fear the law, because if they didn't fear the law, they would have been openly doing it, but they had covered their faces and they were drastically in a conversation with the boy and the girl. So definitely it doesn't look like it abruptly happened. It looked like it was planned. But see, I am not the one who's investigating it, and I am not the one who's justifying it. As a member of the parliament, as somebody who is responsible from the government side, all I can say is that we are with the girl's family, and we are not going to spare anybody who is involved in such an incident. It is also important that we ensure collective responsibility of the society with the government. It is important to, talk to the members of the society so that nothing like this also happens. It's important we instill core values, we instill morals in the society that, it's our collective responsibility to ensure a woman's safety.
2: Let's just also now get you the very latest, and this is in regard to NDTV exclusively speaking to Haryana's Chief Minister, Nayab Singh Saini. He has launched a sharp attack on the opposition. While speaking on governance, the Punjab politics and the Gurgaon waterlogging issue in an exclusive interview, he's also spoken about Gen Z, and let's listen in to what is really being said by the leader.
3: जो आप धुआंधार रैलियां कर रहे हैं पंजाब में और पग पहनकर कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी और खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कह देते हैं कि चुनाव है इसलिए पग पहन लिया है, और असली नकली का सवाल कर देते हैं।
4: देखिए मनलोक्य जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। पंजाब के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। मैं उसको पर चर्चा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि गुरुओं की दी हुई सम्मान है, गुरुओं का आशीर्वाद है। और ये मनोज्ञ जी आज से नहीं, लंबे समय से परिवार के अंदर हम समय समय के ऊपर जब कोई भी इस प्रकार का फंक्शन होता है तो उसके अंदर मैंने बराबर दस्तार को सजाया है। अभी भी मेरे ख्याल से ये वीर बाल दिवस का एक बड़ा कार्यक्रम कुरुक्षेत्र छठी पातशाही पवित्र स्थल के ऊपर, जहां गुरुओं के चरण कमल पड़े, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने मेरा नहीं पंजाब के लोगों का अपमान किया है। उन सब लोगों का अपमान किया है जिहड़े देश दुनिया के विच रह रहे ने, उन्हां दा अपमान किया जिहड़े सुबह शामी गुरु घर विच जा करके शीस नवाउंदे ने, उन्हां दा अपमान ये भगवंत मान ने किया है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ भगवंत मान को नहीं पता लगता है मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, उसको नहीं पता चलता।
3: ऐसा क्यों?
4: वो केजरीवाल को मालूम होगा, वो प्रोपगंडा देश के सामने भी, पंजाब के सामने भी, और पूरी दुनिया च बैठे पंजाबी भाई उन्हें सब के सामने वो इदा प्रोपगंडा सामने आया।
3: लगता है कि केजरीवाल ही सरकार चला रहे हैं, क्योंकि वो दिखते भी हैं, वो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के।
4: बिना केजरीवाल के तो पत्ता भी नहीं पंजाब में हिलता, पत्ता भी नहीं हिलता। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि मान साहब ने अगर ये गल कही है कि पगड़ी नकली है, मैंने कहा सी पिछले दिनों, मैंने कहा सी मान साहब नू माफ़ी मांगनी चाहिए, उस थां ते जाके माफ़ी मांगनी चाहिए है जिथे गुरुआं ने बख्शीश दिती है सानू, जिन्हां ने ये सम्मान साढ़े सिर ते रखिया, ये साडा अभिमान है, ये साडा स्वाभिमान है, परंतु मान साहब नू शायद नहीं पता चलता पंजाब दे विच उन्हां दा जन्म होया है। मैनू ऐसा लगता है कि उन्होंने पंजाब दे कल्चर नू समझा नहीं है भी पंजाब दा कल्चर की है। मैं पिछले दिनों वेख्या उन्हां दी कई वीडियो आंदी है, सारी झूठी बोल रहे, अरे कुछ तो सच्ची बोलो। मैं नशे की एक वीडियो उन्हां दी वायरल हुई सोशल मीडिया ते, और उद्दे विच कह रहे कि साड़ी सरकार ने 76 लाख लोग जड़े नशे का कारोबार करते सी, 76 बोलिया पता नहीं 72 बोलिया, इन्ने इतने लख लोग जेल ते विच सुटते, कहा उन्नू इन्ना नहीं पता कि जेलां मां रखण दा समान किन्ना है, किन्ने लोग आ सकते हैं।
2: Manogya, thank you for getting us that a special interview. Moving on now to a beautiful rescue that's been unfolded in West Bengal's Jalpaiguri. This is where an elephant calf was swept away by the strong currents of the Teesta River. While fishing, a group of fishermen spotted the frightened calf struggling in the water, and without hesitation, they took their boat nearly 3 kilometers through that strong current to reach it. The fishermen managed to pull the calf to safety and handed it over to the forest department, and they then in turn managed to locate the mother, and in a heartwarming ending, their efforts paid off. The calf was reunited with its family.

क्योंकि एसआईआर एक संवैधानिक एक्सरसाइज है जिसको कोर्ट ने कहा है, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के शशि थरूर तक ये कह चुके हैं। तो सवाल तो ये उठता है, जब आपके ऊपर अब ये प्राइमा फेसी साबित हो रहा है कि बिना भारत के नागरिक बने आपने वोट डाला, ये तभी हो सकता है कि आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, ये तभी हो सकता है कि आपने अपने रसूख और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स किया जो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से कॉग्निजिबल ऑफेंस है। और एसआईआर का प्राइमेसी क्या है? डेड वोटर्स, रिपीटेड वोटर्स, घुसबैठियों को हटाना, विच इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड। तो अगर इन दोनों को आप कोरिलेट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि अपनी लोकतंत्र की चोरी को छिपाने के लिए ही आज कांग्रेस एसआईआर का विरोध कर रही है।

0: ऑफेंस कमिट हुआ है, अर्थात क्या कांग्रेस पार्टी गांधी वाड्रा परिवार ने फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए सोनिया गांधी, जो 1980 में भारत की नागरिक नहीं थी, उनको वोट डलवाया?
1: All right, moving on now. Probe widens in the IIT Bombay student Sahil Wakore's death. The crime branch has CCTV footage for investigation. The footage allegedly shows this entire sequence of events that took place inside the examination room, and of course the sequence in which Sahil was asked to leave the classroom. Meanwhile, the student body has softened the caste bias claim and has said that our position has never been one presuming guilt or prejudging the ongoing investigation. At IIT Bombay, the faculty forum has backed Professor Dwala, stating that he has not been suspended and continues to remain a member of the institute's faculty. Support is also coming from faculty members in IIT Madras and Delhi for Professor Dwala. Meanwhile, IIT Bombay has begun replacing ceiling fans in student hostels with wall-mounted fans, in the view of the incident that took place at IIT.
2: उस शाम को हमें सिर्फ कॉल आया प्रोफेसर का
3: जी,
2: अचानक से कॉल आया सर, रात 8 बजे की साहिल ने सुसाइड किया है, ऐसा करके कॉल आया। इतने दिन होने के बाद उस प्रोफेसर ने माफी मांगी। और प्रोफेसर बता रहे कि साहिल ने कुछ गलती नहीं की, फिर भी साहिल के साथ ऐसा क्यों हो गया? सर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे साहिल को न्याय मिलना चाहिए। अगर उसकी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? आज तक की ये पहली घटना नहीं है सर, और जो भी घटनाएं हुई है उस घटना के बारे में आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी गई, कुछ ही हुआ नहीं। लेकिन हमने जब ये बोला तो हम पर भी वो प्रेशर डाल रहे है।
4: साहिल ने माँ बाप को बोला था कि मम्मी यहाँ पे थोड़ा बच्चों पर अन्याय करते हैं, जातिवाद करते हैं। आज वो कॉलेज में अगर साहिल के आज भी फेवर में न्याय नहीं मिल रहा होगा तो आज भी साहिल पर अन्याय ही हो रहा। हमारा पूरा भरोसा है कि ये चौकसी सीबीआई करे।
5: Extremely pained and upset at the loss of young life of our institute. The whole problem, I think, is that before a proper investigation has been completed and before the facts of the matter are out, people have started taking sides and people have started assuming some things, and under the assumptions they are making statements, they are taking positions, which is not fair. I mean, investigation will immediately reveal the reality of the situation. Okay, so my only worry is that if this trial by media or trial by social media especially starts happening for everything, how are we able to operate?
6: कि विंगमेट थे आप लोग, दूसरे को जानते थे, एग्जाम में कॉपी किया गया, इसको लेकर आपको उसने क्या बताया?
7: उसने किसी से भी कुछ बात नहीं की, यही बात है, सब स्पेक्युलेशन है। कॉपी करने के बाद जब उसको बाहर लेके गए उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की, तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। आई डोंट थिंक, जितना मैंने फर्स्ट ईयर में उसे देखा, कि हमने से किसी में या उसके दोस्तों में से किसी ने उसके कास्ट पर कभी भी रिमार्क किया हो। IIT बॉम्बे में ऐसा कल्चर है ही नहीं कि कोई किसी के कास्ट पर रिमार्क करता है, क्योंकि हम सारे जेईई देव स्टूडेंट, हमें आइडिया है कि ये सब नहीं करना होता है, हम एजुकेटेड हैं। एंड मुझे नहीं पता ये एंगल कहाँ से आया। डी ने कि ये सस्पेंशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट, उसका भी रेजिग्नेशन नहीं था, क्योंकि जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हम उनका रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे।
1: Right, let's move on now to some shocking story which is coming in here from the national capital. Three rape horrors have numbed the national capital. In three separate cases, minors have been sexually assaulted in Delhi, with the incidents being reported in Kalkaji, Kishanganj and Sadar Bazar area. In Kishanganj area, when the survivor's family protested against what has happened to her, the police went on to lathi charge the family members.
8: In Kalkachi, a 17-year-old girl was allegedly gang raped by

0: सर आवाज आ रही है आपको मेरी?
1: आवाज आ रही है, हल्की हल्की आ रही है।
0: सुमित जी आप ही बोल दीजिए, अगर हम आपके पिताजी की प्रतिक्रिया लेना चाहें वो क्या कहेंगे आप एक बार उनको बता दीजिए।
1: बिल्कुल। वो पूछना चाहते हैं कि टीम की जीत पर और दीप्ति के प्रदर्शन पर आपका क्या कहना है?
2: टीम की जीत पर बेहद खुशी है बहुत ही, और दीप्ति ने भी अच्छा प्रदर्शन किया आज। उसने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए हैं और वो पूरे एशियन गेम्स और एशिया कप में हमारी बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बैट से भी अच्छा किया है, बॉलिंग से भी अच्छा किया है, और आगे आने वाले विश्व कप में भी हम इसी तरह से प्रदर्शन करेंगे और सारे विश्व कप इंडिया को ला के देंगे, और हमें बेहद खुशी है, बहुत प्रसन्नता है हमें।
0: जी
3: आपको एक सवाल और पूछना था। अब एशिया का लक्ष्य तो हमने पार कर ही लिया है, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल भी हमने जीत लिया है, लेकिन ओलंपिक्स में पहली बार 2028 में भारतीय टीम जाएगी, तो उसको लेके आप कितना एक्साइटेड हैं और वहाँ पे आप कैसा प्रदर्शन देखना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तक जैसा आप गेम देखते आ रहे हैं, वनडे वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, एशियन गेम्स में, अभी आगे चल के जैसा आपने कहा कि अभी हम ओलंपिक में भी 2028 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से अभी टीम एक यूनिट के साथ उतर रही है गेम में, और जिस तरह से हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं है कि हर मैच में एक ही प्लेयर प्लेयर ऑफ द मैच बन रहा है। अगर आपकी टीम से हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच एक डिफरेंट प्लेयर बनता है, उसका मतलब ये है कि आपकी पूरी टीम अच्छा कर रही है।
3: थोड़ा घर का माहौल के बारे में बताइए हमें। दीप्ति जब खेलती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो कैसा माहौल होता है, कैसी एक्साइटमेंट होती है वहाँ पे, और पूरी फैमिली, आसपास की नेबरहुड, कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं?
1: बिल्कुल, देखिए ये हमारे शहर के लिए, केवल उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात नहीं है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और जब भी दीप्ति का मैच होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी लोग सुबह से अपने काम में फ्री हो जाते हैं, हमारे मम्मी जी, पापा जी, अड़ोसी पड़ोसी, और सभी लोग एकजुट होके मैच देखना पसंद करते हैं। पूरी फैमिली इकट्ठा होके उस दिन सारे काम से फ्री हो जाती है कि आज दीप्ति का मैच है, आज कोई काम नहीं रखेंगे। तो बहुत ही अलग लेवल पे मैं कहता हूँ कि उत्साह होता है हमारा, और पूरी कॉलोनी में एक खुशी का माहौल होता है कि दीप्ति का मैच है, इतने बड़े मंच पे वो परफॉर्म कर रही है, तो सब लोग देखना पसंद करते हैं।
0: सुमित, हमारी कोलीग रिका है नागोया में, वो मैच कवर कर रही हैं, और जब इससे पहले मैच से पहले जब हम प्रैक्टिस देखते हैं तो रिका ने हमें बताया था कि कैसे दीप्ति अब जो यंग टैलेंट है टीम का, उन्हें भी बहुत सपोर्ट कर रही हैं, श्री चरणी को भी बहुत सपोर्ट करती हैं, गाइडेंस देती हैं लगातार, तो एक वो जो सीनियर की एक भूमिका होती है, अब ऐसा लग रहा है कि दीप्ति ने अपने कंधों पर वो जिम्मेदारी भी ले ली है। हरमनप्रीत कौर तो हमेशा जब मुसीबत में होती है दीप्ति के पास जाती ही हैं, लेकिन अब शायद और यंगस्टर्स को ग्रूम करने के लिए भी उनके पास जा रही हैं।
1: बिल्कुल, कहते हैं ना कि आप जो सीखते हैं वो अनुभव से सीखते हैं, एक्सपीरियंस जो आपके पास है वो कहीं ना कहीं आपके जो यंग प्लेयर्स हैं, वो जो अभी टीम में नए नए आए हैं, और आपके पास इतना अनुभव है, आप अभी समझिए 380 विकेट्स के साथ में लीड कर रहे हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं आप आईसीसी रैंकिंग में, तो उस चीज का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो जरूर दीप्ति को सबसे साझा करना चाहिए, अपने यंगस्टर्स को और ग्रूम करना चाहिए, जैसा कि वो कर रही है, लगातार कर रही है। टीम के प्लेयर्स से बात करना और एज अ सीनियर अपनी जिम्मेदारी को समझना कि हम तो एक लंबे समय से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि टीम का हर एक प्लेयर परफॉर्म करे, खासतौर से वो यंगस्टर्स जो बहुत उम्मीद करते हैं कि हमारे सीनियर्स हमको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे, तो उस पर दीप्ति खरा उतर रही है।
0: सुमित जी बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए, और एक बार फिर से कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, द इंटायर फैमिली, एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस रिका। प्राउड मोमेंट, लाइक आई सेड, द फर्स्ट गोल्ड मेडल इज हियर फॉर द इंडियन कंटिंजेंट। शॉर्टली वी विल बी हियरिंग द नेशनल एंथम एज वेल एज द गर्ल्स विल स्टेप ऑन टू द पोडियम टू रिसीव देयर गोल्ड मेडल्स। बट आई एम सॉरी, आई हैड टू इंटरप्ट यू अर्लियर, यू वर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव परफॉर्मेंस दैट वी हैव सीन फ्रॉम द इंडियन टीम थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, एंड ऑल्सो इन द सेम मंथ two back-to-back titles, the Asian Games and of course the Asia Cup before that, undisputed champions of the continent.
4: Absolutely, you know, and they have proven the kind of quality that they bring to table. It's not just about, you know, one performance. They have delivered win after win, and that's why, you know, there are so many fans also who have turned up at the Korogi Park here in the Nissin city, which is just outside of Nagoya. We didn't expect as many fans to turn up, and they are not just Indian fans, they're local Japanese. Of course, there are some Indian fans here as well. I believe that there are a lot more Indian fans who have gone to Sano City today to catch Indian men's team. But this moment is something that all the sports fans will remember, and the ones particularly around 500 of whom have turned up at the Korogi Cricket Park here.
0: Well, now that you reminded us about that one-off match between India and Japan, let me tell our viewers that India has managed to win that one as well, despite putting only 32 on board in the five overs that we got to play because of wet conditions on the outfield. And Japanese team was folded out for 30 runs. I mean, they could finish only that much in their five overs. So both the matches going in India's favor. And Gaurav, that match essentially is not going to have any impact on the outcome of these Asian Games and how the matches will transpire in the quarterfinal, semi-final stages here. But good start for the cricket team on both the counts. The women's team, of course, getting the gold medal. Men have also started with this friendly match going their way.
3: And Preeti, we wouldn't expect anything less. We are, of course, the powerhouses when it comes to world cricket. So anything less than victory at the Asian Games is going to be considered unsatisfactory. Coming to that men's match, a few hairy moments there, because essentially when you have a five-over match, it's a free hit. You know, free hit is something we're used to in T20 cricket, but this was a different context when I call it a free hit, because in five overs, anything is possible. The distance between the two teams in terms of quality, in terms of performance, sort of goes out of the window when it's only five overs. And we saw, given the amount of rain, the weather conditions over there, it wasn't easy even for the Indians. So from that standpoint, good to get a win under the belt, but obviously the real work is yet to come.
0: All right. On that note, thank you very much for the moment, Gaurav and Rika, for joining us with your inputs. Of course, India's medals tally at the Asian Games now stands at 7, with 1 gold, 4 silver and 2 bronze medals coming our way so far. There's plenty lined up. We're slipping into a short break, but keep watching NDTV for more news and updates.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: for investigation. The footage shows Sahil allegedly cheating during an examination. The CCTV footage also captures the sequence in which Sahil was allegedly asked to leave the classroom. Meanwhile, the student body has softened the caste bias claim and said that the bias claim and said that our position has never been one of presuming guilt or prejudging the ongoing investigation. And IIT Bombay, the faculty forum, has backed Professor Dhulia and stating that he has not been suspended and continues to remain a member of the institute's faculty. Support is also coming from faculty members at the IIT Madras and IIT Delhi for Professor Dhulia. Meanwhile, IIT Bombay has begun replacing ceiling fans in the student hostel rooms with wall-mounted fans as a result of this latest case.
1: उस शाम को हमें सिर्फ कॉल आया प्रोफेसर का
2: जी,
1: अचानक से कॉल आया सर, रात 8 बजे की साहिल ने सुसाइड किया है ऐसा करके कॉल आया। इतने दिन होने के बाद उस प्रोफेसर ने माफी मांगी और प्रोफेसर बता रहे कि साहिल ने कुछ गलती नहीं की, फिर भी साहिल के साथ ऐसा क्यों हो गया? सर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे साहिल को न्याय मिलना चाहिए। अगर उसकी कुछ गलती नहीं थी फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? आज तक की ये पहली घटना नहीं है सर, और जो भी घटनाएं हुई है इस घटना के बारे में आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी गई, कुछ ही हुआ नहीं। लेकिन हमने जब ये बोला तो हमें हम पर भी वो प्रेशर डाल रहे है।
3: साहिल ने माँ बाप को बोला था कि मम्मी यहाँ पे थोड़ा बच्चों पर अन्याय करते हैं, जातिवाद करते हैं। आज वो कॉलेज में अगर साहिल के आज भी फेवर में न्याय नहीं मिल रहा होगा तो आज भी साहिल पर अन्याय ही हो रहा। हमारा पूरा भरोसा है कि ये चौकसी सीबीआई करे।
0: Now moving on to the latest in the Jamui horror. The accused Nandan Yadav in Jamui molestation horror case has been shot in an encounter. The accused is injured after he was shot during the clash with the Jamui police. Meanwhile, three other people who have been arrested so far in the case are being probed and investigated. This comes after a shocking case from Bihar's Jamui where a minor boy and girl were allegedly surrounded and harassed by a group of men. Visuals from the incident show the girl being confronted, grabbed and assaulted even as she pleaded with folded hands and urged the men to let her go. A masked man is seen grabbing the girl and dragging her away in this shocking video.
4: जमुई की घटना के मुख्य आरोपी नंदन यादव को पुलिस ने पांव में गोली मारी, उसका इनकाउंटर किया क्योंकि जब पुलिस उसे पकड़ने आई उसने भागने की कोशिश की। देखिए हम आपको वो स्पॉट दिखा रहे हैं, ये वो पूरा इलाका प्रतापपुर का नदी घाटी का इलाका है जहां पर ये आरोपी छिपा हुआ था और पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और पुलिस को जब इनपुट मिले उसके बाद पुलिस इस तरफ आई और यहीं पर यहां से करीब 1 किलोमीटर दूर उस आरोपी का घर है मेरे दाहिनी तरफ और बाईं तरफ आपको ये नदी दिखाई दे रही है और सामने की ओर वो पहाड़ है मड़वा पहाड़ जहाँ पर उसने इस वारदात को अंजाम दिया था, वो इस जगह से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये पूरा स्पॉट है और इसी तरफ पुलिस जो है वो गई थी उसको पकड़ने के लिए और तभी उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने उसके पांव में गोली मारी। क्योंकि जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से बिहार की कानून व्यवस्था पर महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे और इसके बाद जब इन आरोपियों को इसमें से पहले 3 नाबालिग पुलिस ने हिरासत में लिए, उनसे पूछताछ की और फिर पुलिस को ये इनपुट मिला कि जो मुख्य आरोपी जिसने अपने फेस को कवर कर रखा था, गमछा बांध रखा था अपने मुंह पर, वो इस तरफ ये जो सामने घाटी का इलाका आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ नदी है इस इलाके में वो छिपा हुआ था और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर ही उसका गांव है जहाँ पर वो ट्रैक्टर चलाता है, ट्रैक्टर उसने रख रखा है और वही उसकी आजीविका का साधन भी है और उसके अलावा लोग ये बता रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्वों के साथ भी उसकी संगत थी। बहरहाल ये इसी इलाके में छिपा हुआ था और यहाँ से पुलिस की गाड़ियाँ सामने की ओर से आई और जब उसको तलाशने के लिए गई वो भागने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान पुलिस ने उसके पाँव में गोली मारी।
0: We will be tracking that Jamui case very, very closely here on NDTV, but it's time to head for a

0: AIADMK के फ्लैगशिप स्कीम अभी AIADMK के बीन कॉपीड बाई टीवी के. एनी वे सर, वी वेलकम एंड कंग्रेचुलेट मिस्टर विजय ऑन दिस. दिस वॉज फर्स्ट कन्फ्यूड बाई आर फाउंडर लीडर एम डी आर. ही द वन हु गॉट द न्यूट्रिशियस न्यू मी स्कीम 50 years ago. Then the morning breakfast was kick-started by our leader EPS, Yedappadi, back in 2020. He laid the inauguration foundation for this year, Akshaya Patra Foundation. Good and bad. One more scheme, a copycat scheme of AIADMK, being taken forward by this government. We wish some good luck and success.
1: And that's all we have on this bulletin. But when we come next, we will be getting you more updates from across the country. Slip into a short break.

0: recently in the month of Sawan, you went all the way to Haridwar with that Kavad. Kya ye cultural nationalism hai, tech pe dhyan de? क्या है क्या आपकी मैसेजिंग, कावड़ या कंप्यूटर?
1: क्या टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन साथ में नहीं जा सकते क्या? डज बीइंग प्रोग्रेसिव और बीइंग टेक सेवी, डज इट मीन वी अप्रूट आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर कल्चर?
0: सो सोमनाथ एंड स्टार्टअप्स कैन बोथ कोएग्जिस्ट,
1: दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया सो स्पेशल. इफ वी होल्ड ऑन टू वन एंड लीव द अदर, देन पद्मजा, इंडिया विल स्टॉप टू बी भारत.
0: Before you did the Kavad Yatra, you also did the Iron Man.
2: Tere junu ke aage ambar panahe mange.
1: Essentially includes 1.9 kilometers of swimming in the ocean, 90 kilometers of cycling, 21.1 kilometer run. So you got to finish all of this in 8 hours 30 minutes. That's the cutoff. This year, unfortunately, I was a little lazy and I couldn't train.
0: We are going to knock that laziness off. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, excellent. Round of applause, guys. Excellent.

0: contest alone. So we're looking at this war of words, the split between the Samajwadi Party and Congress out of elections in Uttar Pradesh. Congress goes on to say, however, if such a situation arises, we are prepared to fight on all 403 assembly seats. A war of words we are witnessing between Samajwadi Party and Congress ahead of elections in Uttar Pradesh. Earlier, we of course heard Nitin Nabin saying that BJP will win the elections. But right now, a war of words between both the parties. Congress saying ready to fight alone if required. Take a listen.
1: मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए नहीं।
2: अखिलेश जी बोल दें ये बात, राहुल जी ने तो शुरू से कहा है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। आपको भी हम कितने बार इंटरव्यू दे चुके, हम बार बार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की, ताकत देने की, और चूंकि बड़ा दल होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, तो हम तो सबको साथ लेके चल ही रहे हैं। हमने तो एक बार भी नहीं कहा कि अकेले लड़ना है, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है अकेले लड़ना, तो तैयारी तो 403 सीट की हम कर चुके हैं, और इसलिए कर चुके हैं कि जब गठबंधन होगा तो जो हमारा घटक दल होगा, सपोज करो हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से होता है, तो जहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, हमें उनको भी तो जिताने में मदद करनी है। वो तभी तो करेंगे जब हमारा वहाँ संगठन होगा। तो हम
0: We're slipping into a very short, quick break, but come right back. Coming up next, the NDTV World exclusive. NDTV's Ajay Rajkol speaks to former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina. Come right back.

0: आरोपी गिरफ्तार किए और एक नंदन यादव जी का इनकाउंटर हुआ, तो हमारी वो पूर्व धारणा जो थी वो मूर्त रूप लिया।
1: We're slipping into a very short break, but come right back. We're tracking all the stories that matter here on NDTV.

0: सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का स्वर्ण कमल पुरस्कार तमिल फिल्म अमरण के लिए श्री राजकुमार पेरियसामी को प्रदान किया जा रहा है।
1: Congratulations, Major. Mukul.
2: Army.
3: Army. मेरा जॉब इल्ला. It's my life.
4: The film is awarded for masterfully directing a deeply moving biographical war drama that balances intense action with profound human emotion. The film pays heartfelt tribute to courage, sacrifice of a real-life soldier and his family. Moving on to the next award, Best Children's Film is awarded to the Telugu film 35 Chinna Kathakadu, produced by S Originals and Voltaire Productions Private Limited. Sri Shrujan Yarabolu receives the Golden Lotus. A heartwarming film that celebrates the transformative power of education, curiosity, and parental support.
0: और इसी फिल्म के निर्देशक श्री नंदकिशोर ईमनी को भी स्वर्ण कमल प्रदान किया जा रहा है। आप प्राप्त कर रहे हैं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। ये दिल को छू लेने वाली फिल्म है जो शिक्षा, जिज्ञासा और माता पिता के सहयोग की ताकत को खूबसूरती से सामने लाती है। जोरदार तालियां स्वर्ण कमल पुरस्कार के लिए। राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों का संवर्धन करने वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार कैप्टन मिलर को मिल रहा है, जो प्रोड्यूसर सत्यज्योति फिल्म्स की तरफ से श्री त्यागराजन टीजी स्वीकार कर रहे हैं।

0: The film is recognized for its rugged visuals, mythic framing, and unflinching politics that elevates a rebellion saga into a genuinely rousing original Tamil cinema.
1: और इसी फिल्म के डायरेक्टर श्री अरुण माथेश्वरन को भी रजत कमल का सम्मान बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज की कैटेगरी में पुरस्कृत ये फिल्म धनुष के प्रभावशाली अभिनय जीवी प्रकाश के शानदार संगीत और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ साहसिक कहानी के माध्यम से तमिल सिनेमा में मजबूत पहचान बनाती है
0: An award for the best popular film providing wholesome entertainment goes to Telugu film Kalki 2898 AD Shri Chalasani Ashni Datta on behalf of Vijayanti Movies receiving the Golden Lotus. The film is recognized for creating groundbreaking visual spectacle that seamlessly blends a highly entertaining narrative and expansive world building with mythological imagination. The exceptional visual effects set new benchmarks in Indian cinema.
1: He's receiving the Golden Lotus. Aur film ke nirdeshak Shri Nag Ashwin Singh Reddy ko bhi Swayan Kamal ka samman. Telugu film Kalki 2898 AD mein adbhut drishyatmak rachna ke saath manoranjak kahani aur samriddh pauranik kalpana ka shandar mel dekhne ko milta hai. Apne asadharan drishya prabhav se ye film Bharatiya cinema mein naya manak sthapit karti hai.
0: Distinguished Guest Award for the Best Debut Film of a Director being conferred to Shri Randeep Hooda for the film Swatantrai Veer Savarkar. He receives the Golden Lotus.
2: Ab baaton aur meetingon ka samay samapt.
1: गोल्डन लोटस अपने नाम करने वाले इस फिल्म में स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के जीवन के शुरुआती दिन भारत की आजादी की लड़ाई पर उनके प्रभाव और योगदान को दिखाने में निर्देशक की कला के प्रति उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और महारत की झलक मिलती है और अब सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 के नाम फिल्म निर्माता जियो स्टूडियोज एंड B62 स्टूडियोज की तरफ से श्री आदित्य धर प्राप्त कर रहे हैं स्वर्ण कमल
3: रूम में बैठे हम लोगों और पीएमओ के कुछ कोर मेंबर्स के अलावा प्राइम मिनिस्टर सर के पीए तक को नहीं पता होना चाहिए कि हमारा प्लान क्या है
0: The film centers on the mission to fully integrate Jammu and Kashmir into the Indian Union, emphasizing a unified and indivisible nation, highlights the battle against local corruption and dismantling conflict economy that had historically destabilized the region.
4: Shifting our focus away from the national wars, which is currently underway in Gujarat, to another case of Veeramani Pokso case, which is currently widening with investigators now examining not just the allegations against the accused, but also the circumstances surrounding the earlier investigation. The Tamil Nadu Chief Minister has now directed the authorities to expedite the probe. The police are now looking into the role and conduct of the investigators who handled the case previously. Among the key questions is the alleged 90 crore rupee money trail linked to the case. Investigators are now examining whether the earlier probe was influenced, including allegations that money may have been paid to previous investigators. Meanwhile, Tamil Nadu Minister CTR Nirmal Kumar has slammed the Stalin government and said that they did not arrest Veeramani. DMK has hit back at TVK and said that there is no lapse on the side of the DMK. We were not showing any favoritism.
5: A very worst incident which has taken in the capital, and this has been like reported in the previous DMK government, and I don't know who has been behind this to close this case or subsidize this case or put this case on hold. Definitely without the then CM Stalin, no one would have been able to take such a call, because like it was a very high level business person, and the incident also like a very worst incident. Lot of kids have been harassed and raped. Definitely it is a very sensitive issue, and definitely like CM given instructions to go ahead with the full-fledged investigation.
6: Complaint has received on October 6th. FIR has filed on October 7th. only the shadow has been seen. So they have not get any clear evidence. So they have not proceed again, further. But at the same time, we will get the time from the court that whenever you get the strong evidence against Veeramani, you will proceed. So that permission we have obtained. Then only they can proceed. There is no lapse on DMK side. We are perfect. We are.
4: So at this point of time, there are various allegations that the money may have been paid to previous investigators, and the Tamil Nadu minister CTR Nirmal Kumar has slammed the Stalin government. This is the Veeramani pox case we're talking about. In 2019, there was a video which allegedly showed him taking money. The activist has also received a pen drive. The probe, as we speak, all right, we'll be tracking this very closely. But Sahil's parents are currently doing a press conference. Take a listen.
7: आज मला पत्रकार परिषद घ्यायचीच होती, बोलायचंच होतं तुमच्याशी, त्यामुळे ते बोलावलं होतं. माझा मुलगा हा आय आय टी येथे दुसऱ्या वर्षाला शिकत होता आणि अचानक त्याला मला फोन येतो आणि त्याची आत्महत्या होते असं सांगण्यात येते. परंतु प्रत्यक्षदर्शी पाहिलं आणि FIR-प्रमाणे जे काही कलम लागलेले आहेत त्या कलमाप्रमाणे त्या आरोपीवर चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यांना त्वरित अटक झाली पाहिजे. त्याला भरपूर टॉर्चर केलं होतं. त्या टॉर्चर मुळे चौकशी व्हायला पाहिजे.
8: क्राईम ब्रांच ऑल द इन्व्हेस्टिगेशन मस्ट बी कम्प्लीटेड एट द सूनेस्ट.
7: त्यांनी हा तपास त्वरित पूर्ण करावा. जे आरोपी आहे शिरीष केदारे
8: सूर्यनारायण दुला मस्ट बी अरेस्टेड.
7: यांना त्वरित अटक करावी अशी माझी विनंती आहे.
8: इमिडिएटली Suryanarayan Dula had told my child that he came from a specific community. Suryanarayan Dula had said my son that he can get him into a problem anytime.
7: न्याय मिळाला पाहिजे अशी माझी हे.
8: My son deserves justice.
7: साहेब तपास करतील परंतु त्वरित त्यांना अटक झाली पाहिजे अशी मी सर्वांना विनंती करतो.
8: द इन्व्हेस्टिगेशन मस्ट बी कम्प्लीटेड इमिडिएटली अँड प्रोफेसर सूर्यनारायण दुला मस्ट बी अरेस्टेड.
7: त्यांना अटक व्हायला पाहिजे हे माझी विनंती आहे. मला मी
8: आय केम ऑन द 18th ऑफ सप्टेंबर अँड द चिल्ड्रन टोल्ड मी दॅट
7: मी त्याची सहन कर. त्यामुळे त्याला सहन करण्याची मी समज दिली. पण एवढंच माझं हे झालं. परंतु त्याच्या जो अन्याय टॉर्चर अत्याचार झालेला आहे त्याला जातीवाचक शिविगाळ केलेलीच आहे. तो त्यांनी मला स्वतः
8: सांगितलेलं
7: शिक्षक आहे तो असे म्हणत होतो
8: that he belongs to a lower caste. Dula has told him that there will be action against him and he can get him into a problem anytime.
7: तो सब त्यांनी फुटेज द्यावं आणि ते सिद्ध व्हावं. त्यांनी ते एकीकडे ते म्हणतात काय
8: फुटेज मस्ट बी कॉन्फिस्केटेड अँड ऍक्शन टेकन अकॉर्डिंगली. ऑन वन एंड दे से दॅट दे हॅड अपॉलोजाइज अँड सेकंड दे आर हायडिंग देअर फुटेजेस. वाय इज दॅट ऑल द फुटेजेस मस्ट बी शेअर.
7: त्रास देत होते त्याला टॉर्चर करत होते.
8: वॉज द सेक्रेटरी ऑफ बॅडमिंटन इन दॅट आय आय टी इन्स्टिट्यूट
7: आय आय टी
8: ऍडव्हान्स 614 इन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन दॅट वॉज हेल्ड.
7: आणि त्यांच्यावर जो ऍड्रेस
8: आहे हॅज बीन अप्लाइड अंडर दॅट दे मस्ट बी अरेस्टेड इमिडिएटली.
9: का त्यांच्यावर असा तुमचा जो आरोप आहे
7: मागणी आहे
9: का काय कारण काय त्याला असं का तुम्ही पार्श्वभूमी बघा सर.
8: यू हॅव मस्ट लुक ॲट द हिस्ट्री ऑफ आय आय टी.
9: आतापर्यंत तुम्ही पार्श्वभूमी बघा त्यामध्ये
7: विद्यार्थ्यावरच आणि आतापर्यंत जी तुम्ही पार्श्वभूमी बघा त्यामध्ये अगोदरच्या एससी
8: विद्यार्थ्यांच्या
7: क्राईम ब्रांच का ये जो चौकशी आहे वो चालू आहे. चौकशी चालू आहे वो चौकशी चालू करेंगे लेकिन जो अपराध दर्ज हुआ है उसके बारे में जल्दी से जल्दी ये पूरे करके वो जो शिरीष केदारे और सत्यनारायण डुल्ला उसको अरेस्ट कीजिए. मेरी यही विनती है सबसे.
10: सर एफआईआर में आपने क्या आरोप लगाए थे, क्या कुछ हुआ था जिसके बाद एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया है, आपने क्या आरोप लगाए हैं दोनों प्रोफेसर, क्या क्या कहा है वो बता दीजिए.
7: इसमें एफआईआर में सब लिखा वाला है,
10: सब सब बताइए.
7: इसमें एफआईआर में सब लिखा वाला है, इसमें एफआईआर में सब लिखा वाला है. इसके तहत चौकशी होने को होना और उसको अरेस्ट करके जो है अरेस्ट होने के बाद ही ये सब ये हो जाएगा.
10: सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए क्या लिखा है.
7: ये अभी 13 तारीख को
10: क्या कहा था आपको, क्या कुछ
7: जो एफआईआर में लिखा है वही सच बात है. हो मैं एफआईआर की कॉपी सबको दूंगा. उसको जातिवाचक स्वीकार करे थे, वो ऊपर के जाति का है, ये कराए वाला है, सब उसको टॉर्चर करके और उसको उसकी आत्महत्या नहीं है. वो हुशार तो हुशार विद्यार्थी होता तो आत्मा हो वो पढ़ा लिखा लड़का था. एडवांस क्रैक करना मामूली बात नहीं है. हाँ आप उसका ऑल इंडिया रैंक देखिए. उसके वो ये कुछ भी गलत आरोप करेंगे, वो बोलेंगे कि उधर का चीटिंग करके वो एडवांस क्रैक करके आया है, कुछ भी गलत बात करके ये मैटर को डिस्प्यूट कर रहे हैं. इसकी न्यायिक उसकी चौक उसको अरेस्ट करिए, यही मेरी विनती है.
10: आखिरी बार जब आपके बेटे ने आपसे बात की थी तो क्या आरोप लगाए थे, उन्होंने कुछ बताया था कि कितनी तकलीफ में है,
7: उसको
10: क्या कुछ होता है,
7: उसको पीड़ित हो रहा है. मैंने उसको समझाया कि बेटा आईआईटी का थोड़ा सहन कर ले, इसके बाद तेरी पूरी जिंदगी अच्छी है करके मैंने ये करा, यही मेरी गलती हो गई.
10: क्या बताया था लड़के ने आपको
7: उसको. इसमें लिखा है सर, सब तो सब बताया अभी बताया ना सर, सब लिखा
11: तो
7: है अभी बताया ना सर.
11: एक मिनट
7: धन्यवाद.
11: मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ, 1 मिनट. आप जब शांत रहेंगे तभी मैं मेरा ओपिनियन दूंगी.
10: ओपिनियन मत दीजिए, जो हुआ है
11: हाँ जो हुआ है वो बताऊंगी. आप शांत रहिए.
10: जी मैम.
11: आप प्रेशर डाल रहे. मैं साहिल की मदर सोनाली वाकोड़े एज अ टीचर हूँ. मेरा बच्चा गया है, मैं उसकी मदर हूँ, मुझे मालूम है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है. आप मेरा बच्चा नहीं है तो आपका बच्चा समझकर उसको न्याय दीजिए. मुझे मालूम है मेरा बच्चा कैसा था, कितना टैलेंटेड था. मैं आपको सभी से यही गुजारिश करती हूँ, हाथ जोड़ के आपके पैर पड़ के गुजारिश करती हूँ कि मेरे बेटे को न्याय दीजिए. उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए न्याय दीजिए. आप पत्रकार है, आप भी खोज सकते हैं क्या हुआ है. और आईआईटी का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए. दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं. आपका भी काम है, आप भी नागरिक है समाज के. यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दिस पर्सन. अभी आपके भी आपके भी बच्चे स्कूल में जाते हैं, अच्छे प्रशासन में जाते हैं। एक मिनट सर, आई वांट टू टॉक। आपके भी बच्चे जाते हैं, जब अच्छे प्रशासन में जाते हैं ना, वो सभी प्रशासन में ऐसा ही चलता है, लेकिन माँ बाप का काम क्या है, चलता है। हमने उसे मेंटली सपोर्ट किया कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सहन कर। वो हमारी गलती हो गई, अगर हम उस दिन उसको लेके गए थे ना, मेरा बच्चा आज जिंदा होता।
7: वो सब चौकशी होने के बाद ही पता चला।
11: चौकशी
7: उसको अरेस्ट करिए
11: एज अ टीचर,
7: उसको अरेस्ट करिए
11: एज अ मदर एंड फादर। आई ट्रस्ट क्राइम ब्रांच, माथा मेरा प्रशासन पर पूरा विश्वास है, संविधान पर भी विश्वास है, मेरे बच्चे को न्याय मिलेगा। एफआईआर में अभी मेरे पति ने जो बताया वही सच है, पूरा बताया।
12: प्रॉपर हिंदी में आप बता दीजिए।
11: पूरा बताया हम जब 13 तारीख को उसको मिलने गए थे उसके रूम के अंदर, उन्होंने बताया कि पापा मुझे थोड़ा टॉर्चर हो रहा है, वो जो महार जाते उससे मुझे शिविका दे रहे हैं, हाँ जाती है। तो हमने उसे समझाया कैसा चलता रहता है, और हमने उसको मॉरल सपोर्ट भी किया। यह हमारी गलती हो गई, यह अच्छा काम नहीं है कोई भी प्रश्न, लेकिन बच्चे की मेंटेलिटी उसको कुछ मालूम नहीं रहता ना। 19 साल का बच्चा था, 20 रनिंग चालू थी, वो क्या समझ सकता था। मुझे आपसे यही विनती करती हूँ कि मेरे बच्चों को प्लीज न्याय दे। अभी मेरी मेंटेलिटी नहीं है सर, नो कमेंट्स। मैं तो यहाँ से अभी मैं चक्कर का गिर जाऊंगी।
7: करनाचा छेड़ा लगावा, माझी कळकळीची विनंती आहे, त्यांना त्वरित अरेस्ट व्हावं, माझी कळकळीची विनंती आहे सर।
11: धन्यवाद।
7: एफआईआर में लिखा वाला है, एफआईआर की कॉपी आपको मैं दूंगा, एफआईआर की इसमें जो है वो होने को होना ज्यादा
11: मेरे जगह पर रखकर आप
13: किस तरह से टॉर्चर करती थे डुल्ला आपके बेटे को,
7: ऊपर जाति का है, मैं ऊपर जाति का हूँ, आप नीचे जाति को, आपको मैं कौन से भी गलत इसमें फंसा के निकाल लूँगा, ऐसे करके वो टॉर्चर करके उसको ये कर रहा था, ऐसा मेरा आरोप है।
13: आपके बेटे के साथ ये कितने दिनों से चल रहा था?
7: ये 3 महीने से चल रहा था, जब से चालू हो गया है।
11: ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नो कमेंट्स प्लीज।
4: गिविंग आउट दैट प्रेस ब्रीफिंग, सेइंग दैट प्रोफेसर डोला नीड्स टू बी अरेस्टेड। Sahil's parents met Sahil on the 13th and said that Sahil told his parents that he was being harassed because of his caste, with Professor Dola clearly saying that you belong to a lower caste. But at this, I want to go across to Sujata, who's joining me on the phone line. Sujata, that press briefing by Sahil's parents, they're clearly demanding for justice. They put all the blame on Professor Dola. Meanwhile, the crime branch has clearly not found any evidence against the professor so far. Sujata, we'll go across to Sujata in a moment from now. But that was a press briefing by Sahil's parents, who have alleged that caste bias in IIT Delhi. They're demanding justice, but so far, with the evidence, the CCTV footage, there has been no allegation, no evidence that has been found against Professor Dola. The parents have said that that the professor said that you belong to the lower caste and I belong to the higher caste, and I can put you in any kind of a situation. These are what the parents are saying. They're demanding justice for their son. While on the other hand, the crime branch has not found any evidence, anything wrong against the professor. A short while ago, even the SCST cell of IIT Bombay said that Sahil never approached them with any issue, with any grievances or any caste slurs discrimination that he was facing at the IIT Bombay campus. Meanwhile, the mother said that Sahil complained to her that they met Sahil on September 13th and he complained that there was caste discrimination that was being done against him. However, with evidence suggests that Sahil did not approach the SCST cell of IIT Bombay and there was nothing, no information, no record of any complaint so far. Students have also now softened their stand, but the parents of Sahil, who lost a 20-year-old child, demanding for justice. I'll go across to Abhishek Awasthi, who joined me live from Mumbai. Abhishek, Sahil's parents demanding for justice. They're time and again saying there were caste-based slurs used against Sahil. However, Crime Branch and even the faculty at IIT Bombay has found no evidence against those claims made by Sahil's parents.
12: Definitely, you know, this is the allegations are very serious in nature, and both the parents were making a point out here that Sahil had informed them earlier also, but they told him that it is difficult to secure admission in such a prestigious organization, and you know, they told him to bear this for some time. And that's what the parents say was that our mistake, that their child had to take an extreme step. But at the same time, immediate arrest of Professor Dulla and Kedare is the primary demand of both the parents, and they say that they have complete faith in the crime branch investigation which is going on. But at the same time, you know, they want justice for their child, justice for Sahil. And the sequence of event, what his father, more importantly, that it has not happened for
4: Brad Abhishek. Of course, we'll be tracking the story very closely. Too many facets emerging in NDTV. We'll be tracking all angles of the story. But for now, we're slipping into a very short break. Come right back. Coming up next is Nationwide at 6 with my colleague Ankit Tyagi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: इलेक्ट्रिसिटी के तार काटे गए।
1: आपके यहाँ साबोटाज किया गया इस तरीके?
2: किया गया है,
1: तार काट करके
2: हर तरह से साबोटाज करने की कोशिश।
0: अब देखो बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस आएंगे। रॉयटर्स जैसी एक संस्था ने इतनी फेक न्यूज चलाई कि मैरिड वुमेन को अलाउड नहीं करते। आई टोल्ड द एंटायर इंडस्ट्री बी प्रिपेयर्ड फॉर सच इंसिडेंट्स नाउ।
1: और ये सिर्फ फिजिकल साबोटाज नहीं है, एक नैरेटिव का
2: साबोटाज। ये होगा, पक्का होगा, देखना।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आके और मसाला।
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: Recently, in the month of Sawan, you went all the way to Haridwar with that Kavad. क्या ये cultural nationalism है? Tech पे ध्यान दे, क्या है क्या आपकी messaging? Kavad या computer?
3: क्या technology and tradition साथ में नहीं जा सकते हैं क्या? Does being progressive or being tech savvy, does it mean we uproot ourselves from our culture?
2: So Somnath and startups can both coexist.
3: That is what makes India so special. If we hold on to one and leave the other, then Padmaja, India will stop to be Bharat.
2: Before you did the Kavad Yatra, you also did the Iron Man.
4: Tere junu ke aage ambar panahe mange.
3: Essentially includes 1.9 kilometers of swimming in the ocean, 90 kilometers of cycling, 21.1 kilometer run. So you got to finish all of this in 8 hours 30 minutes, that's the cutoff. This year, unfortunately, I was a little lazy and I couldn't train.
2: We are going to knock that laziness off. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, excellent. Round of applause, guys. Excellent.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: में सेकंड ईयर में एनर्जी इंजीनियर करके पढ़ाई कर रहा था। उनका उनको आत्महत्या हुई करके हमारे को मैसेज आया, फोन आया। हाँ, उसके वो देखने के बाद हमने उससे 13 तारीख से मेरी बात हुई थी। वो बोल रहा है कि यहाँ जातिवाद के इस पे टॉर्चर हो रहा। मैंने उसको समझाया, बेटा इतने बड़े इसमें कुछ हो सकता है, विरोधक रहते, थोड़ा शांत हो जा, हाँ करके मैंने उसको समझाया। आगे की जिंदगी आपकी अच्छी है, ऐसे करके उसको समझाया। लेकिन मेरे को पता चला कि उसकी आत्महत्या हुई है, तो करके हमने उसके जो जिनके उन्होंने मेरे को नाम बताए थे उनके तरफ मैंने एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज कराया, और आत्महत्या को जिन्होंने उन्होंने प्रवृत्त कराया, तो वो कलम से उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो इसके बावजूद क्राइम ब्रांच को चालू है वो, तो उसके बाद भी वो उनको पूरा जो सबूत है ना, सबूत सभी है हमारे पास, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे मैडम? मेरी
1: जी
0: मांग
1: आप
0: है
1: कह रहे हैं
0: अरेस्ट
1: आपके
0: करो
1: पास
0: उनको।
1: जी आप कह रहे हैं कि अब सबूत है, बट कॉलेज ने भी कहा है कि SC ST सेल जो है वहां पे कोई साइल ने कोई कंप्लेन नहीं की वो, और जो क्राइम ब्रांच पुलिस भी ये कह रही है कि कोई एविडेंस कोई सबूत नहीं है कि कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ
0: नहीं,
1: है प्रोफेसर
0: एविडेंस है
1: डोला
0: ना
1: ने कहा।
0: मैडम, अभी जब केदारे सर वो बच्चों को मिलने आए थे, उनके वो मांगने जो उनके जो मांग डिमांड थी, डिमांड का लेटर लेके आए थे, तब उनके साथ जो लड़की थी उन्होंने सीधा सीधा वो क्लिप में बताया है कि यहाँ जातिवाद चल रहा था, यहाँ जातिवाद, तो वो सुन रहे थे। आप वो फुटेज देखिए, आपको पता चलेगा कि जातिवाद, वो जब उतने आरोप हो रहे थे तो वो कुछ नहीं कर रही थी, केदारे सर कुछ नहीं कर रहे थे, तो उनको वो मालूम, उनको ये है तो मालूम है कि ये सही बात है करके उन्होंने उसको विरोध नहीं करे। हाँ,
1: जब आप साहिल से लास्ट कब मिले थे?
0: 13 तारीख,
1: आप जब 13 तारीख
0: 13 तारीख
1: को साहिल से मिले थे, और 13 तारीख को, और जब साहिल ने कहा कि उसके साथ जातिवाद हो रहा है, तो आपने कभी कभी कोई कंप्लेन क्यों नहीं की? साहिल ने कोई SC ST सेल में कोई कंप्लेन कभी क्यों नहीं की?
0: 13 तारीख को बताया था मेरे को, और अगले 2-3 दिन में उसका फोन आया है। और ये ऐसा हो रहा मैडम, वो उनको उस पर चीटिंग का आरोप कर रहे थे उन्होंने, और बाद में वो वही माफी मांग रहे कि उसको ऐसी चीटिंग हुई नहीं। इसमें क्या समझेंगे हम, आप बोलिए ना। हाँ,
1: जी हम
0: एक
1: बहुत
0: तरफ
1: माफी
0: बोल रहे
1: चाहते हैं कि
0: पहले
1: आपके
0: बच्चे
1: साथ ये
0: ने चीटिंग करी, और ये एक प्रोफेसर एक दिन लगातार 2009 से एक ही पद पर है, इतने बड़े IIT जिनका नाम है मायावी नगरी के, वही का ब्रांड है वो, वहाँ एक टीचर 2009 से यानी 15-16 साल से एक ही इस पर रह रहा, ये गलत नहीं है? 3 साल के ऊपर नहीं रहने को ना।
1: अच्छा ठीक है, वो तो अलग बात है। हम आपसे कह रहे हैं कि जब साहिल ने आपको बताया कि उसके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की 13 तारीख को जब
0: कंप्लेंट
1: बताया
0: की ना
1: साहिल ने
0: मैडम,
1: ये सब?
0: कंप्लेंट की ना, FIR दर्ज हुआ है हमारा, FIR
1: वो आपने कब
0: दर्ज
1: किया है?
0: हुआ है।
1: वो आपने अब किया है?
0: हाँ, हमने FIR दर्ज किया, वकील साहब को मालूम है ना। हाँ,
1: जी आपने अब FIR दर्ज किया। हम कह रहे हैं कि जब आप साहिल से मिले थे 13 तारीख को, जब साहिल ने कहा कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, आपने तब कंप्लेन क्यों नहीं की?
0: मैं बोला इतना बड़ा IIT में उसका लॉस होगा, इसको समझाया बेटा, विरोधक रहेंगे 2 साल ऐसे ही निकाल ले, तेरी जिंदगी आगे अच्छी है, पर क्या हमने इग्नोर किए उसको।

0: He's the only leader in the entire world who has following of more than 100 million people. So I'm sure he's doing something right. Now, when it comes to doing something right, it is not just communicating with people, not just being on Instagram, not just being on social media and trying to be an influencer. He's trying to use the platform native language of that platform. He's trying to use the language which Instagram needs, which Gen Z understands.
1: There's another reason short-form video matters. It compresses politics. A long policy speech can be reduced to a single sentence. A complicated political argument can become a 30-second clip. A reaction can become the story. And sometimes the clip travels much further than the real speech. And then there's another format that has transformed the way politicians communicate online. Podcasts, long-form conversations. A setting that feels like a political rally and more like a conversation.
2: जैसे आप कह रहे थे कि politician जब आप बनना चाहते हैं तो it's not about you. You are secondary. जो लोग हैं जिनके लिए आप politician हैं वो पहला बन जाते हैं.
3: जब मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा था कि मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा. दूसरा, मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा. और तीसरा, मनुष्य हूं, गलती हो सकती है. गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी. मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा.
1: नो पोडियम, नो कैंपेन स्टेज, नो ट्रेडिशनल टेलीविजन इंटरव्यू फॉर्मेट, जस्ट माइक्रोफोन्स, कैमरास एंड अ कॉन्वर्सेशन दैट कैन रन फॉर आवर्स.
4: You have a reputation for being a decisive leader. So can you walk me through on this topic of ideas, how you make decisions, what's your process? So for instance, when facing a high stakes choice,
5: चीजों को grassroots level पर स्थितियों के विषय में मेरी first hand information है. किसी से पूछा हुआ, जाना हुआ, ऐसा किताबों के द्वारा नहीं पाया है. गवर्नेंस की दृष्टि से देखें तो मेरे परिवार पास कोई प्रकार का बैगेज नहीं है कि जिस बैगेज को लेकर के मुझे दबे रहना है, उसके आधार पर मेरा चलना है, वो नहीं है.
1: Prime Minister Modi has increasingly stepped into this space as well, appearing on podcasts and long-form digital conversations that allow audiences to see a different side of the political leader. And the podcast does something traditional political communication often cannot. It creates room for the conversation to breathe. Stories, personal experiences, politics.
5: दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है, हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं.
1: Technology.
5: भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है.
1: India's future.
6: ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए और आपने आज हमारी खुशी वो दो गुना और ज्यादा बढ़ा दी है.
3: सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है.
1: यूथ
7: हाँ,
8: मुझे हाथ मूव करना है. आगे पीछे
7: जोर से मारिए, जोर से मारिए. हाँ मारिए.
1: And even lighter, more personal moments. Prime Minister Modi's digital journey began in the era of Facebook and Twitter. It has now entered the age of Reels, Shorts and creator culture. The political feed is now a space where leaders, creators and audiences meet. And Prime Minister Modi has built one of the world's largest political digital audiences by staying present across that changing landscape.

0: Good evening and welcome. Thanks very much for tuning in to NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, when there is a story that the entire country is talking about, on that story, the buck stops here. 4 days after a young IIT Bombay student took his own life, the country is grappling with a difficult, uncomfortable, and perhaps politically incorrect question. Is caste being weaponized? Is an anti-discrimination law being used indiscriminately? And if yes, then what is the way out? These are the uncomfortable questions that today are being asked by not just a large section of students and faculty at IIT Bombay, but by people across the country. Because after the death by suicide of Sahil Vakode at IIT Bombay, not only was his exam invigilator, Professor Satyanarayan Dula, booked under the SC-ST Act, but Sahil's parents are now also demanding his immediate arrest. Leveling fresh allegations today, Sahil's family said that IIT Bombay director Professor Shirish Kedare and Professor Dula both tortured Sahil for several months, leading to his eventual death. Sahil's mother said that he was constantly discriminated against, and despite the mental support and counseling given to him by his family, the child finally simply could not take it anymore.
1: उसको जातिवाचक स्वीकार कर रहे थे, ऊपर के जाति का है ये करे वाला है, सब उसको टॉर्चर करके और उसका उसको उसकी आत्महत्या नहीं है, वो हुशार तो हुशार विद्यार्थी होता। हाँ, आप उसका ऑल इंडिया रैंक देखिए, उसके वो ये कुछ भी गलत आरोप करेंगे, वो बोलेंगे कि उधर का चीटिंग करके वो एडवांस क्रैक करके आया है, उसको अरेस्ट करिए, यही मेरी विनती।
2: मेरे बेटे को न्याय दीजिए, उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए न्याय दीजिए, और IIT का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए। दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आपका भी काम है, आप भी नागरिक है समाज के, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दिस पर, आपके भी बच्चे जाते हैं। जब अच्छे प्रशासन में जाते हैं ना, वो सभी प्रशासन में ऐसा ही चलता है, लेकिन माँ बाप का काम क्या है, चलता है। हमने उसे मेंटली सपोर्ट किया, कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सहन कर। वो हमारी गलती हो गई, अगर हम उस दिन उसको लेके गए थे ना, मेरा बच्चा आज जिंदा होता।
0: The thing though is that in this extremely sensitive time, it is the parents' word against that of the students and faculty of IIT. Yes, a crime branch investigation will eventually decide what the truth really is. But for the time being, the faculty at IIT Bombay has consistently stepped up in support of Professor Dula and said that not only did he follow all the SOPs when correcting Sahil for alleged academic malpractice, but that Professor Dula also has an unblemished record when it comes to such issues. There has been no complaint against him for any kind of discrimination, leave alone caste discrimination. Today, even the students' body that initially protested after Sahil's death clarified that their protest, the march that they carried out, was not to presume guilt on the part of Professor, and that Sahil's death, and this is the most important part, they underscored the fact that Sahil's death should not be made a platform for anyone's political interests.
3: जो भी किया लाइक कॉपी करते हुए पकड़ा गया, फिर सुसाइड कर लिया। कॉपी करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट सुसाइड करना इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, तो उसके लिए दुख तो है। सब बच्चों के अंदर सिंपैथी है साहिल की, होनी भी चाहिए। पर फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें डिमांड्स जो बच्चे रख रहे हैं वो डिमांड्स भी काफ़ी हद तक सही हैं, बहुत सारी सही डिमांड्स हैं। पर फिर जो केस लगाया गया हेडुल्ला सर के ऊपर वो कम्प्लीटली बेसलेस है मेरे हिसाब से। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन IIT बॉम्बे में नहीं होता है, जितना मैंने जाना है अभी तक। मेरे साथ भी नहीं हुआ, मेरे किसी दोस्त के साथ भी कभी नहीं हुआ। मैं भी पहले प्रोटेस्ट

0: हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। सबसे पहले आपकी क्या मांग है, आपकी सबसे पहली क्या मांग है अभी?
1: मेरा बेटा IIT ओवई में सेकंड ईयर में एनर्जी इंजीनियर करके पढ़ाई कर रहा था। उनका उनको आत्महत्या हुई करके हमारे को मैसेज आया, फोन आया। हाँ, उसके वो देखने के बाद हमने उससे 13 तारीख से मेरी बात हुई थी। वो बोल रहा है कि यहाँ जातिवाद के इस पे टॉर्चर हो रहा। मैंने उसको समझाया, बेटा इतने बड़े इसमें कुछ हो सकता है, विरोधक रहते थोड़ा शांत हो जा, हाँ करके मैंने उसको समझाया। आगे की जिंदगी आपकी अच्छी है, ऐसे करके उसको समझाया। लेकिन मेरे को पता चला कि उसकी आत्महत्या हुई है, तो करके हमने उसके जो जिनके उन्होंने मेरे को नाम बताए थे उनके तरफ मैंने एट्रोसिटी एक्ट के मामला दर्ज कराया, और आत्महत्या को जिन्होंने उन्होंने प्रवृत्त कराया, तो वो कलम से उन पर FIR दर्ज हो चुकी है। तो अब FIR दर्ज हो चुकी है, तो इसके बावजूद क्राइम ब्रांच को चालू है वो तो उसके बाद भी वो उनको पूरा जो सबूत है ना, सबूत सभी है हमारे पास, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे मैडम? मेरी
0: जी
1: मांग
0: आप
1: है
0: कह रहे हैं
1: अरेस्ट
0: आपके
1: करो
0: पास
1: उनको।
0: जी आप कह रहे हैं कि अब सबूत है, बट कॉलेज ने भी कहा है कि SC ST सेल जो है वहां पे कोई साइल ने कोई कंप्लेन नहीं की वो, और जो क्राइम ब्रांच पुलिस भी ये कह रही है कि कोई एविडेंस कोई सबूत नहीं है कि कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है,
1: एविडेंस
0: प्रोफेसर
1: है
0: डोरा
1: ना
0: ने कहा।
1: मैडम, जब केदारे सर वो बच्चों को मिलने आए थे, उनके वो मांगने जो उनके जो मांग डिमांड थे, डिमांड का लेटर लेके आए थे, तब उनके पास साथ जो लड़की थी उन्होंने सीधा सीधा वो क्लिप में बताया है कि यहाँ जातिवाद चल रहा था, यहाँ जातिवाद, तो वो सुन रहे थे। आप वो फुटेज देखिए, आपको पता चलेगा कि जातिवाद, वो जब उतने आरोप हो रहे थे तो वो कुछ नहीं कर रही थी, केदारे सर कुछ नहीं कर रहे थे, तो उनको मालूम, उनको ये है कि मालूम है कि ये सही बात है।
2: And now let's take your stories that are making headlines down south. A fresh flashpoint is emerging in Tamil Nadu over the proposed Secretariat Assembly complex. Fishermen in that area have now announced a protest on September 29, demanding that the government should drop the proposed 1200 rupees crore project. The fishermen had given the government time till September 21st to respond to their concerns after a consultative meeting. But with the deadline now over and no response from the government, they have decided to take their protest to the streets. This comes amid growing political opposition to the proposed secretariat complex, with concerns being raised over its impact on the fishing communities and their livelihoods as well. We're getting in political reactions from the DVK and the DMK on that story. Let's listen into that.
3: Chief Minister will not do anything against the people, or if any segment of people are suffering or anything, definitely CM will not allow. I think they are doing a detailed project report, and definitely CM will do a review, and then the announcement will be done. We'll wait for that. Thank you.
4: It's going to affect the people living in that area. Not only that, the fishermen, it's a very strong fisherman living area where we have built many houses for them. And there are 13 schools in that area. Apart from that, there is already a coastal regulatory zone. Before 500 meters, you cannot construct any tall building. All these things are there, and I don't know how they are going to build the secretariat, whether they have approached the coastal regulatory authority and got permission from them, we don't know. In all ways, that area is not suitable for constructing a secretariat.
2: Well, the probe into the Viramani Poxo case is now widening, with investigators examining not just the allegations against the accused but also the circumstances surrounding the earlier investigation. The Tamil Nadu Chief Minister has directed the authorities to expedite the probe. The police is now looking into the role and conduct of the investigators who handled the case previously. Among the key questions is the alleged 90 crore rupee money trail linked to the case. Investigators are examining whether the earlier probe was influenced, including allegations that money may have been paid to previous investigators. Meanwhile, Tamil Nadu Minister CTR Nirmal Kumar has slammed the Salan government and said

0: You say you weren't going to cover me. You shouldn't be covering me.
1: But
0: I will tell you, it is an honor to be at the United Nations, and we're making a lot of progress. Our country is doing really, really well.
2: I take some issue with the premise. So he's not banning media outlets. What he's doing is saying, we're not going to give you special access to the White House if you engage in what is effectively propaganda.
3: Not just me, but also our photographer had their badge taken this morning. Of course, after President Trump made clear that he wants to ban MS Now, CNN, and Politico. Yesterday, our journalists were able to stay here working on the White House grounds. This is the first action we know of them actually denying us entry into the White House.
4: Well, Trump's second-in-command, Vice President J.D. Vance, has also defended the move, saying it's about basic fairness and not free press violation. But that's about it. And we move on to another story that is also associated with Trump, where it was a crucial diplomatic development that is set to unfold on the sidelines of the UNGA. The leaders of the six Gulf Cooperation Council states are set to meet Trump in New York as the West Asia war nears 7 months. The talks will focus on regional security, energy supplies, and a possible path towards de-escalation. For the Gulf states, the priority is to contain the conflict, protect critical energy infrastructure, and keep the vital shipping routes, including the Strait of Hormuz and the Red Sea, open. They also want to avoid another escalation with Iran and explore a diplomatic way of the crisis. Meanwhile, Trump is looking for greater regional security cooperation and a support in containing the Houthi threat and stability in global oil markets. Washington also faces the challenge of balancing military pressure with the economic cost of a wider war. And ahead of the meeting, the United States Secretary of State Marco Rubio has said that President Trump remains open to talking to anyone to resolve problems. But he also made it clear that no meeting with Iran's leadership was planned at that point in time. And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.
5: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
6: So many attacks.
5: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
6: It's incredible.
5: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
6: Welcome to Left, Right and Center.
5: Hard facts.
6: War-struck country.
5: Hard questions.
6: In the Ukraine.
5: 30 years of trust.
7: In the Kargil area.
6: North Ukraine.
8: In France. In Italy.
6: At Srinagar. Vishnu Shom for NDTV.
5: Vishnu Shom. Only on NDTV. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
9: Launch control, 0 to 100.
10: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
11: This car makes no sense, yet it makes every sense.
12: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
10: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
5: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Yeah. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul.
4: Welcome back. You're watching Newsnight with me, Raisha Sehgal. And our top focus tonight, we continue to track the IIT Bombay suicide case. Sahil's father are now demanding an arrest. And Sahil's father said that when he spoke to Sahil on September 13th is when he met him. I told him to bear all kind of caste discrimination. We'll be tracking that and lots more lined up on the show. But first, we have more breaking news on this very story. Sahil Waqoor's parents are now demanding the immediate arrest of those named in their complaint, alleging that there is sufficient evidence against them. His father, Ravindra Waqoor, has alleged that Sahil had named Professor Surya Narayan Dola before his death and accused the professor of caste-based discrimination and threatening of falsely implicate his son. The family has also alleged that IIT Bombay did not inform them promptly about Sahil's death and that crucial evidence could have been compromised as well. Ravindra has warned that he will sit in protest at the IIT gate if arrests are not made. The allegations are being investigated by the Mumbai Crime Branch as we speak.
1: क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी वो खुलेआम घूम रहे जब आप बोल रहे हैं एक तरफ उनकी चीटिंग हो रही है दूसरी तरफ आप माफी मांग रहे हैं तो इसका क्या मतलब है ये श्री नारायण डुल्ला उसको अरेस्ट करिए बाद में जो जो उसमें आएगा उसको जो चौकसी में आएगा उसको देख चौकसी होने के बाद भी सामने आएगा ये सब वो टॉर्चर करा उत्साह नहीं है उसको टॉर्चर करा वाला है हाँ टॉर्चर क्या है सुसाइड नहीं उसकी हत्या कर की है हत्या की है उसने ओ पिछले जाति का ऐसा कर के उसको दो तीन महीने से चल रहा
7: जब अच्छे प्रशासन में जाते हैं ना वो सभी प्रशासन में ऐसा ही चलता है लेकिन माँ बाप का काम क्या है चलता है हमने उसे मेंटली सपोर्ट किया कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा थोड़ा सहन कर वो हमारी गलती हो गई अगर हम उस दिन उसको लेके गए थे ना मेरा बच्चा आज जिंदा होता
4: Well, the death of IIT Bombay student Sahil Waqoor has now triggered allegations of harassment and demands for accountability. Professor Dula has been booked in connection with the case as the investigation continues. Sahil Waqoor's father is now demanding the arrest of Professor Surya Narayan Dola and a fair investigation into his son's death. He alleges that casteist remarks were made against Sahil and has also questioned why CCTV footage has not been shown to the family. The Mumbai Crime Branch is now examining the CCTV footage witness statements. Reports on the initial probe indicate that alleged casteist remarks remain under investigation and it has not yet been established so far. Meanwhile, Sahil's parents allege that crucial evidence could be destroyed or compromised and they have also now raised questions over the handling of the investigation. The crime branch, as we speak, is examining CCTV footage and other material as a part of its probe. Sahil's father has alleged that the professor threatened to falsely implicate his son. This allegation appears in the father's complaint and remains a part of the ongoing investigation.
8: हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी सबसे पहले आपकी क्या मांग है आपकी सबसे पहली क्या मांग है अभी
13: मेरा बेटा आईआईटी मुंबई में सेकंड ईयर में एनर्जी इंजीनियर करके पढ़ाई कर रहा था उनका उनको आत्महत्या हुई करके हमारे को मैसेज आया फोन आया हा? उसके वो देखने के बाद हमने उससे 13 तारीख से मेरी बात हुई थी वो बोल रहा है कि यहाँ जातिवाद के टॉर्चर हो रहा मैंने उसको समझाया बेटा इतने बड़े इसमें कुछ हो सकता है विरोधक रहते थोड़ा शांत हो जा करके मैंने उसको समझाया आगे की जिंदगी आपकी अच्छी है ऐसे करके उसको समझाया लेकिन मेरे को पता चला कि उसकी आत्महत्या हुई है तो करके हमने उसके जो जिनके उन्होंने मेरे को नाम बताए थे उनके तरफ मैंने एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज कराया और आत्महत्या को जिन्होंने उन्होंने प्रवृत्त कराया तो वो कलम से उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो इसके बावजूद क्राइम ब्रांच को चालू है वो तो उसके बाद भी वो उनको पूरा जो सबूत है ना सबूत सभी है हमारे पास तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे मैडम मेरी मांग है आप करो
8: जी आप कह रहे हैं कि सबूत है बट कॉलेज ने भी कहा है कि SC ST सेल जो है वहां पे कोई साइल ने कोई कंप्लेन नहीं की वो, और जो क्राइम ब्रांच पुलिस भी ये कह रही है कि कोई एविडेंस कोई सबूत नहीं है कि कोई कास्ट बेस डिस्क्रिमिनेशन हुआ है।
13: प्रोफेसर डोरा ने मैडम जब केदारे सर वो बच्चों को मिलने आए थे, उनके वो मांगने जो उनके जो मांग डिमांड थी, डिमांड का लेटर लेके आए थे, तब उनके साथ जो लड़की थी उन्होंने सीधा सीधा वो क्लिप में बताया है कि यहाँ जातिवाद चल रहा था, यहाँ जातिवाद, तो वो सुन रहे थे। आप वो फुटेज देखिए, आपको पता चलेगा कि जातिवाद, वो जब उतने आरोप कर रहे थे तो वो कुछ नहीं कर रही थी केदारे सर, कुछ नहीं कर रहे थे, तो उनको उनको ये है कि मालूम है कि ये सही बात है करके उन्होंने उसको विरोध नहीं करे।
8: जब आप साहिल से लास्ट कब मिले थे?
13: 13 तारीख।
8: आप जब 13 तारीख को साहिल से मिले थे और 13 तारीख को, और जब साहिल ने कहा कि उसके साथ जातिवाद हो रहा है, तो आपने कभी कभी कोई कंप्लेन क्यों नहीं की? साहिल ने कोई SC ST सेल में कोई कंप्लेन कभी क्यों नहीं की?
13: 13 तारीख को बताया था मेरे को, और अगले 2-3 दिन में उसका फोन आया है, और ये ऐसा हो रहा मैडम, वो उनको उस पर चीटिंग का आरोप कर रहे थे उन्होंने, और बाद में वो वही माफी मांग रहे कि उसको ऐसी चीटिंग हुई नहीं, इसमें क्या समझेंगे हम, आप बोलिए ना।
8: जी हम बहुत माफी चाहते हैं कि आपके साथ
13: ये चीटिंग करी, और एक एक प्रोफेसर एक दिन लगातार 2009 से एक ही पद पर है, इतने बड़े IIT जिनका नाम है मायावी नगरी के, वही का ब्रांड है वो, वहां एक टीचर 2009 से यानी 15-16 साल से एक ही इस पर रह रहा, ये गलत नहीं है? 3 साल के ऊपर नहीं रहने को ना।
8: अच्छा ठीक है, वो तो अलग बात है। हम आपसे कह रहे हैं कि जब साहिल ने आपको बताया कि उसके साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की 13 तारीख को जब बताया साहिल ने?
13: कंप्लेंट की ना, FIR दर्ज हुआ है हमारा।
8: वो आपने कब किया? वो आपने अब किया?
13: हाँ हमने FIR दर्ज किया, वकील साहब को मालूम है ना।
8: जी आपने अब FIR दर्ज किया। हम कह रहे हैं कि जब आप साहिल से मिले थे 13 तारीख को, जब साहिल ने कहा कि मेरे साथ ये सब हो रहा, आपने तब कंप्लेन क्यों नहीं की?
13: मैं बोला इतना बड़ा IIT में उसका लॉस होगा, इसको समझाया बेटा, विरोधक रहेंगे 2 साल ऐसे ही निकाल ले, तेरी जिंदगी आगे अच्छी है, पर हमने इग्नोर किए उसको।

0: He's the only leader in the entire world who has following of more than 100 million people. So I'm sure he's doing something right. Now, when it comes to doing something right, it is not just communicating with people, not just being on Instagram, not just being on social media and trying to be an influencer. He's trying to use the platform native language of that platform. He's trying to use the language which Instagram needs, which Gen Z understands.
1: There's another reason short form video matters. It compresses politics. A long policy speech can be reduced to a single sentence. A complicated political argument can become a 30-second clip. A reaction can become the story. And sometimes the clip travels much further than the real speech. And then there's another format that has transformed the way politicians communicate online. Podcasts, long-form conversations, a setting that feels like a political rally and more like a conversation.
2: जैसे आप कह रहे थे कि पॉलिटिशियन जब आप बनना चाहते हैं तो इट्स नॉट अबाउट यू, यू आर सेकेंडरी. जो लोग हैं जिनके लिए आप पॉलिटिशियन हैं वो पहला बन जाते हैं.
3: जब मुख्यमंत्री बना तो मेरा एक भाषण था और सहज रूप से मैंने कहा था कि मैं मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखूंगा, दूसरा मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा और तीसरा मनुष्य हूं, गलती हो सकती है, गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूं, मैं कोई देवता थोड़ा हूं.
1: नो पोडियम, नो कैंपेन स्टेज, नो ट्रेडिशनल टेलीविजन इंटरव्यू फॉर्मेट, जस्ट माइक्रोफोन्स, कैमरास एंड अ कन्वर्सेशन दैट कैन रन फॉर आवर्स.
4: You have a reputation for being a decisive leader. So can you walk me through on this topic of ideas, how you make decisions, what's your process? So for instance, when facing a high stakes choice,
5: चीजों को grassroot level पर स्थितियों के विषय में मेरी first hand information है. किसी से पूछा हुआ, जाना हुआ, ऐसा किताबों के द्वारा नहीं पाया है. गवर्नेंस की दृष्टि से देखें तो मेरे पास कोई प्रकार का बैगेज नहीं है कि जिस बैगेज को लेकर के मुझे दबे रहना है, उसके आधार पर मेरा चलना है, वो नहीं है.
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इंक्रीजिंगली स्टेप्ड इनटू दिस स्पेस एज वेल, अपीयरिंग ऑन पॉडकास्ट्स एंड लॉन्ग फॉर्म डिजिटल कॉन्वर्सेशंस that allow audiences to see a different side of the political leader. And the podcast does something traditional political communication often cannot. It creates room for the conversation to breathe. Stories, personal experiences, politics.
5: Dimagi naksal mauke ki talash mein hai. Hinsa arajakta ke wo raaste khod rahe hain.
1: Technology.
5: भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप्स देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है.
1: इंडियाज फ्यूचर
6: ट्रॉफी यहां पे लेकर आ पाए और आपने आज हमारी खुशी वो दो गुना और ज्यादा बढ़ा दिया.
3: सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है.
1: यूथ Prime Minister Modi's digital journey began in the era of Facebook and Twitter. It has now entered the age of reels, shorts, and creator culture. The political feed is now a space where leaders, creators and audiences meet. And Prime Minister Modi has built one of the world's largest political digital audiences by staying present across that changing landscape.